शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार न होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो, और दो भी जरूरतमंदों को, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: यही सुरूर ले मिले हुजूर के जिक्र में ही सुरूर है। वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, दुनिया की पेरिस को क्या कहते हैं दुल्हन कहते हैं, पेरिस को क्या कहते हैं लोग दुनिया की दुल्हन दुल्हन कहते हैं। बेकलों का ठिकाना ही नहीं, कौन इनका दूल्हा मदीने में, कौन इनका दूल्हा मदीने में, पेरिस दुल्हन कैसे हो सकती है, दुनिया की दुल्हन तो मदीना। जिसने मदीना शरीफ को दिल की आंखों में देखा तो उसे फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो जब इश्क इस कदर बढ़ जाता है तो वो कहता है कि मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, आंखों में बस गया है मदीना होना। काश हम दिल की आंखों से हुजूर का मदीना देख लें। वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जिंदगी में खुदादार मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। अल्लाह हम तमाम को हाजिर नसीब फरमाए, बार बार बा अदब हाजिर था फरमाए। ये मदीना वहां जाना तो बड़ा शर्फ की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है, लेकिन ये वो अर्ज मुकद्दस है कि मलाइक लगाते हैं आंखों में अपने शबो रोज खाके मजारे मदीना। और ये वो मुकद्दस बारगाह कि अदब गाही जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर गमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। शायर इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular Mitti Ajum.
8: Aaji hamesha wangar mulk ke lead kando rando. मुल्क सूबे या शहर के मेरी नजर रखंदड़ के भरपूर जवाब दिनो वेंदो वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो फेयर हॉल में कराची फेस्टिवल के खिताब संदस चवण आए त सिंध पाकिस्तान ठाईंदड़ बानी सूबन में शामिल आए मकानी निज़ाम रुगो सिंध में ही मौजूद आए मुल्क में किथे भी सिंध जेड़ो मकानी निज़ाम न आए। नवन सूबन या इंतजामी यूनिट्स जो कयाम कौमी मसलो आए इन मामले ते किथा भी मजामत न थियण घुर्जे ही फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कंदो दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ एक भेरो बीहर नवन सूबन की हिमायत कंदे चयो आए त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे जो लफ़्ज़ पसंद न आहे त इंतिज़ामी यूनिट सॾियो वञे। सूबे जे मामले ते सियासी बयान वधाए पेश कया पिया वञनि। इस्लामाबाद खे सूबो ठाहियो पियो वञे त सुठो थींदो। अफगानन भी कमजोर हालतुन में पांजे मुल्क में 35 सूबा ठाए छड़ा। खेरियाती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरणी तरमीम ए सूबन ते गलाए रहा आन। खेराती मैंडेट ए फारम सते तले ते आयल कौम जा फैसला न कंदा पेरी ही अवाम वट वन। मैंडेट वठण खां पोइ ॻाल्हियूं कनि कौम जा फैसला फारम 47 वारा न पर आवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा आहिनि। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब मिले। बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली भी सिंध समूरी में मुल्क के डेई रो आए पर इतने लोड शेडिंग सभी का वधिक आए। सिंध जो मकसद अवाम के विराए इस वसीलन ते बीहर सिंध के विराइण इस्तीफा का सवाए वापस घर न वेंदासीं।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular. Mittiye jo maan.

महांगो करे छो डीजल जी 80 लीटर अग में 3 रूपया 72 पैसा वाद पेट्रोल जो नव अग 358 रूपया 77 पैसा डीजल जो नव अग 381 रूपया 77 पैसा थी वयो। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल डीजल जा नवा अग 8 सितंबर ला हुआ। पाकिस्तान चइनि सूबनि सां हमेशा सलामत रहंदो। सिंध जो राजधानी कराची हमेशा वांगुर मुल्क खे लीड कंदो रहंदो। मुल्क सूबे या शहर ते मेरी नज़र रखंदड़ खे भरपूर जवाब डि॒नो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो फेरियल हाल में सलाम कराची फेस्टिवल तकरीब खे ख़िताब। संदसि चवण हो त सिंध पाकिस्तान ठाहींदड़ बानी सूबनि में शामिल आहे। मकानी निज़ाम रुगो सिंध में ई मौजूद आहे। नवनि सूबनि जा इंतज़ामी यूनिट्स जो क़याम क़ौमी असेंबली आहे। हिन मामले ते किथां बि मज़ामत न थियण घुर्जे। ही फ़ैसिलो वफ़ाक़ समेत सूबनि खे मज़बूत कंदो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ हिकु भेरो ॿीहर नून सूबनि जे नवनि सूबनि जी हिमायत कंदे चयो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे बि सूबे जो लफ़्ज़ पसंदि न आहे त इंतज़ामी यूनिट छॾियो वञे।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

वफाकी हुकूमत गुजरियल माली साल में आईपीएस के 11 महीनन में 29 खरब 35 अरब अदा कया। तवानाई वारी वजारत गुजरियल माली साल में आईपीएस के अदा कयल रकम जा तफसील पार्लियामेंट में पेश करे छड्या। 11 खरब 88 अरब पेमेंट जी मद में 15 खरब 58 अरब डिना वया। हुकूमत एक धक में पेट्रोल 12 रुपया 90 पैसा महंगो करे छो। डीजल जी फी लीटर अग में 3 रुपया 72 पैसा वाद। पेट्रोल जो नव अग 358 रुपया 77 पैसा नव अग 381 रुपया 77 पैसा थी वयो। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कयल नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल ए डीजल जा पीटीआई जे 27 सितंबर ते रिथियल एहतजाज ए लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त अज बुधनी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोकर बुधनी कंदो दरख्वास्त गुजार खैबर पख्तूनख्वा जे वडे वजीर जी ऑफिस के सियासी इस्तेमाल खां रोकण ए 27 सितंबर ते इस्लामाबाद जा समूरा रस्ता खुलियल रखण जी इस्तदा कई हुई।

0: कश्मीर के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अंदर फैक्ट्री के लगल बाह से जब्तो अची वो कूलिंग जो अमल जारी बाह सबब इमारत जो एक हिस्सों किरी पो। फायर ब्रिगेड इख्तियारन जो चवण है तो कूलिंग जो अमल एक का बिन डी ताई जारी रही सके तो। स्कूल की स्टेशन भरसा स्कूल की इमारत जबून हाल होने खिलाफ गोठाणन जो एतराज। गोठ कमाल पंवर के प्राइमरी स्कूल की इमारत जबून होजन सबब शागिर्द उस में पढ़ने लगा। गोठाणन शागिर्दन जो चवण है तो स्कूल की इमारत जबून हाल थी हंधा हंधा डरी पई है। कमरन की छित जहा चापुड़ किरण सबब केतरा ही भेरा शागिर्द जख्मी थे। मुतबादल जगह डेई स्कूल की इमारत डारा नई इमारत ठाराए डी वे। बाहो खोसो वेझवाण जा तल हथियार बंधन गोधोवा वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छी। गोधोवा वट डुआरन की अचवन के अहम लंग सबब पुलिस पिकेट कायम कई वही हुई। अणजातल हथियार बंधन रात के वक्त पुलिस पिकेट के ड्राए पट कर छो। पुलिस चवण है जवाबदार सुप गिरफ्तारी लाए कोशिशू जारी आन खेल गिरफ्तार किया।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: It's 11:45 AM This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: जी।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: Express PM. This transcript is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. Mitti jo
7: बनाई वाले वजारत गुजरल माली साल में IPPs के अदा कैल रकम दा तफसील पार्लियामेंट में पेश करे छड़िया। IPPs के एनर्जी पेमेंट जी मद में 11 खरब 68 अरब कैपेसिटी पेमेंट जी मद में 15 खरब 58 अरब रिना वया। कराची में KMC जे हेड ऑफिस के बाय मेयर जी ऑफिस सड़ी रखती वही एमजिनार रोड ते कायम KMC जी ऑफिस के बाय किचन मां लगी बाय जे नतीजे में मेयर मुर्तजावाब जी ऑफिस सड़ी रखती वही। फायर ब्रिगेड जे बिन गारिन बाय ते जब्तो आंदो बाय सबब को जानी नुकसान न थियो।

0: सिंध एयर फोर्स डिफेंस में भाउ भेण ते तशद्दुद में मुलविस जवाबदारनि जी हिफ़ाज़त ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। अदालत मरियम अली रज़ा ऐं तैमूर जी ज़मानत मंज़ूर कई। ॿिन्ही जवाबदारनि खे 20,000 रुपियनि जा मचलका जमा कराइण जो हुकुम। जवाबदारनि खे 10 ॾींहनि अंदरि लाॻापियल कोर्ट में पेश थियण जी हिदायत। फुलजी स्टेशन भरिसां स्कूल जी इमारत ज़बून हाल। ॻोठाणनि जो احتجاج ॻोठ कमाल पंवर जे प्राइमरी स्कूल जी इमारत ज़बून हुजण सबब शागिर्द मैदान ते पढ़ण लॻा। ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो चवण आहे त स्कूल जी इमारत डरी पई आहे। चापुड़ किरण सबब केतिरा ई भेरा शागिर्द ज़ख़्मी थिया आहिनि। नई इमारत ॾिनी वञे। भाउ खोसो वेझो आण जा कल हथियारबंदनि गोधो वाह वटि कायम पिकेट पुलिस ड्राहे छॾी। आण जा कल हथियारबंदनि राति जे वक़्तु पुलिस पिकेट खे ड्राहे पट करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदारनि जी सुञाणप ऐं गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। खेनि गिरफ़्तार कयो वेंदो। यमनी हुसैन जा सऊदी शहरनि ते हमला। 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। हुसैन सऊदी शहर अबा कुमीस मुश्तेक नजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतादी फोर्स मूजिब हुसैन जे शहरनि ते हमले जो सख़्तु जवाब ॾिनो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज।
1: GAFM 91.6।
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular, मिट्टी जो

सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखे त रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदीअ ताईं बहिरी ज़ोन क़ाइम कयो वेंदो। ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ीअ सां घटि थींदियूं। अमेरिका में फी गैलन तेल कराची में केएमसी जे हेड ऑफिस के बाहि मेयर जी ऑफिस सड़ी रख थी वई। एमजना रोड ते कायम एमसी जे ऑफिस के बाहि किचन मां लगी बाहि जे नतीजे में मेयर मुर्तजा वहाब जी ऑफिस सड़ी रख थी वई। फायर ब्रिगेड जे ॿिनि गाॾियुनि बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। बाहि सबब को जानी नुक़सान न थियो।

मटियारी वे जो घर जी छित किरी पई एक जणो फोत बस जख्मी खाण ओठ में घर जी छित किरण सबब निंड सुतल असलम शेख फोत थे एक औरत बाड़ी जख्मी थी।

रेसिडेंट्स में भाउ भेण ते तशद्दुद में मुलविस जवाबदारनि जी हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। अदालत मरियम अली रज़ा ऐं तैमूर जी ज़मानत मंज़ूर कई। बिन्ही जवाबदारनि खे 20,000 रुपयनि जा मुचलका जमा कराइण जो हुकुम। जवाबदारनि खे 10 ॾींहनि अंदर लाॻापियल कोर्ट में पेश थियण जी हिदायत।

भाव कोसो वेझो अणजातल हथियारबंधन गोधो वाह वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छी अणजातल हथियारबंधन रात जे वक्त पुलिस पिकेट के ड्राए पट करे छो। पुलिस जो चवण आए तो जवाबदार की सुणप ए गिरफ्तारी लाय कोशिशों जारी आन खेन गिरफ्तार कयो वेंदो। वाना में दहशतगर्दन से विढ़न्दे शहीद थियल पाक फौज के जवान अली नवाज के फौजी एजाज से तदफीन गोठ पठान खान में शहीद फौजी जवान अली नवाज के जनाजे नमाज में इलाके वासिन वे अंग में शिरकत कई। शहीद के मड़ के फौजी एजाज से सलामी दई तदफीन कई वही।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त एक गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होठों पर 440 हल्के समाल आने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 हल्के समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आकर से प्रोग्राम कर लेते हैं। आकर से प्रोग्राम करेंगे जी आज हम एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ, तो बहुत प्यारा सा कलाम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में सुन लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे।

क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम जो कि आप लोगों के समातों पर नजर था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब मातली मटियारी 92 नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जरा आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे।

डी इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो तो बताएंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो वो क्या तरीकेकार होंगे जो आप फॉलो करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सी बात है बताने के लिए वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज मेरा ऐसे ही दिल कर रहा था कि आप लोगों से ऐसे ही ये वाला सवाल पूछूं। हाँ जी, तो आज के प्रोग्राम का सवाल कुछ इस तरह होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि जब आप अपनी स्किन केयर के लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उस ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोग सबसे पहले अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो चेक करते हैं। हाँ जी, ये आप मुझे बताएं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो प्रोडक्ट को ना चेक करके परचेज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बिना चेक किए ना प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं और उस वजह से ये भी सीन हो जाता है। अच्छा नहीं, ये सारे सीन मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या हो जाता है जब आप बिना देखे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा जल्दी से। और आप मुझे ये बताइए कि जब आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आप क्या चेक करते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं, तो जनाब अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। आज की बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से हमारे पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, हमें बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइएगा, और उसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर इतने सारे लोग हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है जनाब कि जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना वो उनकी निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो नाइट क्रीमें होती हैं, ब्यूटी क्रीमें होती हैं, इनके अंदर भर भर के केमिकल डाले जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई भी सी नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार गया प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और ये जनाब आपको ऐसा निखार देने वाले हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी जो कि आप महंगे महंगे से फेशियल्स कराते हैं ना तब भी आपको नहीं मिलते। तो अगर आप बचना चाहते हैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने से या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भाई बैठकर घंटों अपनी स्किन केयर करते रहें, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें और अपना वक्त भी बचाएं, पैसा भी बचाएं और अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बाकी बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ ना मैं करती रहूंगी, पूरा प्रोग्राम भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डेडिकेट किया जा रहा है। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, आप जनता है मुझे पता होना चाहिए। और जी आप मुझे बताने वाले हैं कि जब आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आप सबसे पहले क्या देखते हैं। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर तो इतनी खूबसूरत डॉक्टर की फोटो लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करेगा ना तो उसकी डायरेक्ट जो नजरें हैं ना वो इस डॉक्टर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हो चुकी है, क्या पता ये भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हो। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आपको भी वो वाली खूबसूरती मिले जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। ओके जी, बिल्कुल यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस भी आप हमें कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और जो आज हमारे साथ नए नए लोग कनेक्ट हो चुके हैं और नए नए लोगों को भी वेलकम करते हैं, नए नए लोग भी हमें 881 और फेसबुक पर ज्वाइन करें, भाई अपनी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पोस्ट मेरी नहीं, ये आप लोगों की पोस्ट है। तो जल्दी से अपनी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाएंगे भाई आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
باقی جو لوگ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرنے میں کنجوسیاں کرتے ہیں نا, ایسا نہ کیا کریں بھائی, ایسا نہیں کیا کریں. پوسٹ کو لائک اور شیئر کیا کریں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں تک ہماری پوسٹ جو نا وہ پہنچ پاتی ہے. تو پوسٹ کو پہنچائیے جتنے بھی لوگوں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں. باقی میرے پاس ایک پیارا سا گانا ہے, گانا بھی ساتھ ساتھ سنتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے فیڈ بیکس کی جانب بھی آتے ہیں.

आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा वेलकम कीजिए। अच्छा, यहाँ पर शेर खान जतोई हमारे साथ हैं, बको देरो बागरानी से कहते हैं अबूजर जतोई और समीना जतोई और शांसी जतोई अदी की आयो सदरा माथी का ताम उतार किया सफा ठीक ठाक मजे में और शिराज अली मला हमारे साथ है पुरानो। ओके, आपका ये मेरे ख्याल में गांव है। कहते हैं सलाम जी, हमें फायजा का गाना तो सुनाइएगा, डेडिकेट आशिक अली मल्हा रहमान मल्हा के नाम। ओके जी, ओके आई ट्राई। और शहजाद अली राजपर हमारे साथ है फ्रॉम बसीरो ताल का फेजगंज, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, FM प्रोग्राम की रानी सिद्रा मुस्कान वेलकम, क्या हाल चाल है आपका सिस्टर? जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं बहुत खुशी होती है, ये पता नहीं क्यों, और जब आप प्रोग्राम करती हैं और हंसती हैं और ओहो बोलती हैं क्या ही बात है, और हंसती हंसती जलाल को तो प्ले करो, सो नाइस ऑफ यू सिद्रा मुस्कान, हमेशा गुलाब के गुल की तरह खिलती और मुस्कुराती रहो। ओके जी, आप भाइयों की दुआएं हैं जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं अवेलेबल तो मैं प्रोग्राम में आपको नंबर्स बता दी रहूंगी जिनके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल भी करा सकते हैं। क्या बात है। ओबीसी अनवर अली भाई हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तपती हुई धूप में एक ठंडी सी हवा हो हमारी तरफ से आपको दोपहर का सलाम हो, और सूरज की तपश है तेज और चलती है गर्म हवा, खुश रहे आप सदा, दिल से है ये दुआ। चमकती धूप में अपनों का ख्याल आता है, दोपहर का ये सलाम मोहब्बत का पैगाम लाता है। तपती हुई राहों में छांव का एहसास हो आप, दोपहर के इस लम्हे में भी सलामत हो आप। क्या मतलब, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हमारे प्यारे अनवर भाई जान। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताएं, इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं? जवार मोहम्मद बचल शंपानी भाई हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया भाई लाइक भी कर दिया करें, ये भी आप लोगों का काम होता है। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मटियारी का तवा से प्रोग्राम ज्वाइन करवाए, प्रोग्राम तो आपके पसंद अच्छी पड़े तो थैंक यू मोहब्बत एंड भावनजू। यासीन कहते नहीं लखरोड में हूँ, नहीं कराची में हूँ, अभी तो मैंने थर वसाया है, थर क्यों वसाया है आपने? और मुझे बताएं आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो गई या फिर अभी तक रहती है? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे ये लगता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवेलेबल होगी तो आपको परचेज करने में आसानी हो सकती है। तो कैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं मैं जरा वापस आकर आपको बताती हूँ, यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
0: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
6: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
5: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अच्छा ॿियो त लाइ छा छा चए थो, पर जेको सॼी दुनिया आहे न, बिल्कुलु इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, सॼी दुनिया में ॾिठो वञे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो वञे पियो। तव्हांखे लॻंदो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ़ पाकिस्तान में यूज़ कई वेंदी आहे, पर ईअं बिल्कुल बि न आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एतिरो ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे जेके ॿाहिरि मुल्कनि में माण्हू बि इस्तेमालु कनि पिया, ऐं ॿाहिरि मुल्कनि में बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई अव्हांखे। अगरि तव्हां वेंदा काॾे बि घुमण ॿाहिरि मुल्क, त तव्हां उते बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां सभिनी खे ॿुधायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन आहे, ऐं तव्हां वेंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे ॻोठनि में, तव्हांजे कंहिं बि सिटी में रहियल आहे अञा ताईं, त तव्हां पाण बि अवेलेबल कराए सघो था। ओके जी, सो अचूं था तव्हांजे मैसेज जी तरफ़। ऐं मैसेज खोड़ सारा तव्हांजा जमा थी चुका आहिनि, सो हिते असांखे ज्वाइन कयो आहे अखलाक बलोच भाई। कहते आंसर डेट देखते हैं, क्या बात है जी, क्या बात है। और मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे, कहते प्रोग्राम खूबसूरत है आपका, सलाम अयूब भट्टी और बाबल खोसो को दीजिएगा। ओके जी। और यासीन कहते हैं हम गरीबों को शमन मिरारी का गाना लाजमी सुना देना। बिल्कुल जी सुनाएंगे, आप तसल्ली रखिए। और फहीम शेख हमारे साथ कहते सलाम याली मदद, मौलाना इस्लाम मदद, एंड वालेकुम अस्सलाम। कहते अदा छा हाल आहे, खुश आयो, सफ़ा चाक स्लेट कलम सब सब तव्हां ॿुधायो। और इन खां अलावा हिदायतुल्ला कहते अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मुस्कान, ये सॉन्ग चलाना आपका गाना यकीन करे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो थोड़ा इसका ना वजाहत के साथ लिखिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, फिर आपका गाना लगा देंगे। और रमजान अली हमें सुन रहे, कहते सलाम बेना, कैसी ये शो में आपको वेलकम कहते हैं, सॉन्ग सुनाए प्लीज वाहिद बख्श की आवाज में, मां कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जो गाना जो फरमाइश न उन्हनि खे लॻायूं था, ठीकु आहे। और अखलाक भाई कहते हैं कि हाँ पहले हम मरे हुए थे, फिर आप आई, फिर हम जिंदा हो गए। ना करे
1: इसका है बच्चा, अन्ना पन्ना सजी दुनिया, अन्ना पन्ना सजी दुनिया।
0: अच्छा यासीन खान, डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है मार्केट में, तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज कर सकते हैं। और फहीम कहते हैं भाऊ कराची क्लिफ्टन से आपका शो सुन रहा हूँ, लारकाना की चिंचियाँ आप देखो। मैं तो रोज ही देखती हूँ और इतना देख चुकी हूँ कि बड़ी बेजार हो चुकी हूँ। अच्छा उनके अलावा महर इरफान सियाल साहब हमें सुन रहे हैं, कहते हैं ग्रेट हॉस्टिंग में मार्जे, थैंक यू वेरी मच हमारे सर, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा जी बख्त अली सियाल भाई हमारे साथ हैं, आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और शहबाज हमें सुन रहे हैं, हाय जी हेलो। और जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दें, लाइक करने में कौन से आपके पैसे जाएंगे। अच्छा ये फरवा गुल हमारे बनाई से, अल्लाह आपको हमेशा, आप पहले क्रीम का नाम चेक करती हूँ, अच्छा ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा फहीम भाई लिखते हैं कि बिना दिल जिया सी तो छा थी पयो, थी पत्थर वया सी तो छा थी पयो, जडहें खिल खुशी मोकलाए वही, झुकिया सी जुड़िया सी तो छा थी पयो। अच्छा थोरो जेको अॻिते जेका लाइन आहे न, उहा थोरा चवंदा आहिनि त या न पढ़ो, हिन करे न पढ़ंदासीं। सो थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हां सां गॾु मौजूद आहियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं इस्तेमाल कंदा ॿुधायो त, वरी चओ था दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम कराची क्लिफ्टन में कहां मिलेगी। अब ये आप वहां जाइए, मालूमात लीजिए कहां कहां पर अवेलेबल है, अगर नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूँ ना उनके ऊपर रابطہ कीजिएगा।

फरवा कहती है यहाँ पे, ये पोइट्री है, मोहब्बत की सजा कुछ यूँ मिली हमको, खुद से बिखर कर भी तेरे ही रहे हम। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक मोहम्मद खान कुंभर मुश्ताक कुंभर हली पोटो स्टाफ खान तासा के ज्वाइन करवाए हैं, तो मोहब्बतूं आइन तवां जी। और जी मुजाहिद राजस्थानी हमारे साथ गए थे, माशाल्लाह यू शो, थैंक यू। बिल्कुल जी, तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी सको था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हें मुनासिब कीमत में मिली रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम इस्तेमाल करो पाया तो शेयर कर, बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी यह गाल भी आए, अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर वनो था जी फरवा असा के तो जदे प्रोडक्ट परचेज कर तुम्हारा जो नालो डिसंदी है, तो बिल्कुल जदे तुम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा तो तुम यकीन मुख्य यकीन नहीं लगो है, तो तुम प्रोडक्ट के जो मॉडल जो फोटो हों ना वो ना हों पर तुम अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वनो था तुम डिसा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से जो डब्बी आ ना उन एक डॉक्टर माइक जो फोटो है, यहाँ भी निशानी तौर में तक गाल बुधा थी, अगर तुम दुकानदार का वो तो वह तक जड़ी तीड़ी क्रीम न पकड़ा सदे, तवे डी स्किन ब्यूटी क्रीम की नॉलेज हो बबा असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वन वो था तो कड़ी आए कि आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी से एक डॉक्टर माइक जो फोटो लगल है, इन में यह गाल साबित थे थी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी है बबा मेडिकेटेड फार्मूलो है, बिल्कुल इस्तेमाल करो, कोई साइड इफेक्ट ना है, तुम मर्द मायूं सभी लगाए सको था।

गोठानी छोरी पूरे वही दिल जो करार आई हाय। अच्छा अब्दुल रजाक कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आया हूँ मीरपुर खास काम मुश्ताक उम्र इस्तेमाल करे पयो रिजल्ट बेहतरीन अचे पयो वदी सिद्रा वाह साईं वाह मोहब्बतूं आइन भाईरन जो। और फहीम भाई कहते हैं भाऊ टॉपिक डेट चेक करते हैं एक्सपायर तो नहीं है बहुत अच्छा करते हैं। और दादाला कहते हैं डब्बा देखता हूँ सबसे पहले डब्बे पे क्या देखते हैं वो ही बताना था।

0: बिल्कुल जी खूबसूरती जो कमाल आई खूबसूरती तमाके तॾहिं मिलंदी जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा. ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर शहजादी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती है सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को. ऐसा वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है बताओ मुझे जल्दी जल्दी. अच्छा अब्बास महर हमें सुन रहे हैं. अब्बास महर आपको वेलकम कहा जाता है. थैंक यू के साथ आप हमारे साथ हैं. और गोट गुलाब लगा रही, खान साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम कहते हैं शो में. कहते हैं आपका शो बहुत नाइस है. और सुरिया सुमरो का आपने गाना बोला है जो कि हम लगाने की कोशिश करेंगे. मजहर अली तुनियो हमें सुन रहे थे. अदी सिद्रा सॉन्ग बिल्कुल आपका गाना भी लगाते हैं. और हमारे साथ है रूबी अली एंड नंडो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो. अदी सिद्रा हम आपका प्रोग्राम शौक से सुनते हैं. आज प्ले मुनवर मोलाई हथ मथे क्यासी डाढ़ुआ. ओके जी ओके, बिल्कुल तव्हांजी पसंद जो गानो हलायूं था. और कश्मीर से अखलाक भाई तव्हां भी गाने जी फरमाइश कई आहे. ऐं छा था चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आहे. बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे घर में केर केर इस्तेमाल करे पियो या केर चए थो त बाबा मूंखे वठी आणे ॾियो? छो त कुझु ख़वातीन अहिड़ी हूंदा आहिनि जेके बाबा उहो मार्केट न वञी सघंदियूं आहिनि, उन्हनि खे वरी थोरो इलाज करणो पवंदो आहे घर जे मर्दनि खे. अगर तव्हांजो भेनर तव्हांजो वाइफ ऐं तव्हांजो अमड़ियूं तव्हांखे चवनि त बाबा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आणे ॾिसा न कंदा कयो. सो जेकी जॻह सभु माण्हू तव्हां क्रीम वठी करे ॾिसो न. ओके जी, सो डी हाल आहे इलाही सारा कंपनी प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं. पर हिते टाइम थियो आहे वठूं था बाबा न्यूज़ में ब्रेक हूंदा. वाइट प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए.
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो.
2: It's 2 PM. This time to buy
3: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular. Mitti jo ma.
7: क्या सऊदी इतिहादी फोर्स मौजूद होसियन के शहर ते हमले जो सख्त जवाब दिनो विंदो. ईरान मुआशी जारियत जारी रखण ते विच ओभर में बैरी जोन कायम करण जी धमकी ॾेई छॾी. ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखंदी. रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदीअ ताईं बैरी जोन कायम कयो वेंदो. ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं कीमतूं तेज़ीअ सां घटि थींदियूं. अमेरिका में फी गैलन तेल $2 ताईं बि थी सघे थो. ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार

किरण न ॾिना वेंदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जे ऐलानियल 27 सितंबर ते ऐलानियल एहतजाज बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आईनी बोहरान सां भेट ॾेई छॾी। अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी, ॿुधणीअ लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो। अदालत चइनि सूबनि जे आईजीज ऐं एडवोकेट जनरल्स खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी कई वेंदी।

0: न्यू सईदाबाद वे जो एसएम बचाओ बंद भरसा मच्छी मारण लाए वे नौजवान ढोरे में बुडी वयो गोला जारी पुलिस एक जने के हिरासत में वठी छड़ो नूर केटी थाने जी हद में गोट भाई खान वटे एमएस बचाओ बंद ता पेर तिड़कण सबब नौजवान राजा बुडी वयो पुलिस रफीक के तहवील में वठी जांच शुरू करे छड़ो। भाव खोसो वेझो अणॼातल हथियारबंदन गोदोवा वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छॾी अणॼातल हथियारबंदन रात जे वक़्त पिकेट खे ड्राए पट करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदारनि जी सुञाणप गिरफ़्तार इलाइक़ो जारी आहिनि खे गिरफ़्तार कयो। कॉलोनी में हमदम कॉलोनी एजाज़ कॉलोनी जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे कोर्ट खिलाफ़ मार्च मेयर जे बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी ऐं एजाज़ कॉलोनी जे रहवासियुनि बुनियादी सहूलियतनि जे कोर्ट खिलाफ़ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन पारां टिनी कॉलोनियुनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत

0: फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: GFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। उसके अलावा आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। मैसेजेस शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। बाकी जो लोग मैसेज कहना चाहते हैं लेकिन उनको तरीकेकार नहीं पता, तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्टार्स दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं जनाब, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। और जब आप हमारा पेज सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम होता है, कमेंट भी आप कर दिया करें, क्या ही हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अच्छा भाई, तो आपके कुछ मैसेजेस की जानब आ जाते हैं जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं। आपके मैसेजेस अगर कमेंट्स की जानब आते हैं

अच्छा यासीन खान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप इतने टाइम से हमारे साथ मौजूद हैं। और फहीम कहते हैं कि भाऊ संडे वाले दिन हमारे ऑफिस जो है ना वो बंद होते हैं, फिर जाऊंगा विजिट करूंगा, कहाँ मिलती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम और मैं डी स्किन का फेस वॉश खरीद करूंगा। चले जी आप मालूम लीजिएगा वहां पर है तो फिर आप परचेज कीजिएगा, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें या फिर डी स्किन फेस वॉश परचेज करें। वैसे अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं इस्तेमाल कर पाए तो आप किसी को तोहफा दे सकते हैं, समझ रहे हैं, तो किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। अच्छा मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, मुगल उमरानी आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। और वजीर हमारे साथ हैं, वजीर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से डॉक्टर वजीर अली, नाइस यो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। अनवर भाई कहते हैं कि उहे भी के डीह हुआ हाणे जिन के नजर अचन थियो हजार खामियों असा में साईं, कदे उहे चवंदा हुआ तो जड़ो कोई ना है अली, यो डटो डींदा हुआ मेरे हरू भरू जाई मानन जी गालन में नहीं था गयो। अच्छा रमजान भाई कहते हैं मौला इस्लाम अदर, मेरी बहन कैसी हो, अल्लाह से आपको आमीन जी आमीन, बस ऐसे ही दुआ दिया करें। और उसके अलावा वजीर भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगाते हैं। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, मौला इस्लाम अदर कहते हैं फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना शाहिद बबर का कलाम, थैंक यू जी जी बिल्कुल आपकी पसंद लगाते हैं। और जी हमारे साथ हैं रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो आप, शो में आपको वेलकम कहता हूँ। और आपने गाने की फरमाइश कर दी है, बिल्कुल जी आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा रिजवान भाई। और चाचा खाली चुनी जो आ चुकी है कहती अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, आई एम नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लिसनिंग योर शो बेटा सिद्धू, आई वाज एडमिटेड इन। हाँ भाई वो फहीम भाई ने बताया था, क्या हो गया आपकी तबीयत को इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई, ख्याल तो आप अपना रखते नहीं है, तो ख्याल रखा करें और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और वजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली जी जी बिल्कुल प्यारे भाई आपको वेलकम कहा जाता है। उनके अलावा हमारे साथ पैनल पर आते हैं तो कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन एक अदद हम गाना भी लगा दी लिस्ट में तो अच्छा रहेगा, तो ये वाला हमारे पास एक गाना है जिसकी फरमाइश थी किसी भाई ने कर दी थी, तो चलें जी साथ साथ इस गाने को भी सुनते आएंगे। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बताएं बिलाल कैसे हैं।

0: बेवस बलोच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से, आप कैसी हो? आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज नाइस है. थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया.
1: माता जो फुल मजे में हा
0: वाला वाला फुल मजे में आयो कौन? ग्री स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन? अच्छा यासीन खान कहते हैं आज के दौर में किसी पे एतबार नहीं करना. बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. और सागर अली हमारे साथ ही कहते हैं बेवस सागर अली, बेवस वरी छू बुला या बेवस ही छड़ी जो तां हाणे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सही.

अब्दुल गफार भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब्दुल गफार भाई क्या कह रहे हैं? खुश आमदीद जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नवाब शाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, नहीं पता नहीं कहाँ से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी होगी, आप जाइए वहां से मालूमात लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बता दिया करें, अगर नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 1812 50 970। यो नंबर अगर बंद हो जाए, मसरूफ हो जाए, न तवे रिस्पॉन्स मिले तो बो भी नंबर आए जिन रातो करे सको था। नंबर आए 1832-73-84-309। हाँ जी, सिंधी में नंबर याद क्या है। सिर्फ उन्हें माने के बाबा चवना है तो भाती अंग्रेजी में नंबर बुधाई असा समझ में ना इंदो बाबा तला सिंधी भी बुधाया थी हाँ तुम नंबर से राबो करें पाने गरीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सो था। हाँ गानो हलाया हथ मथे क्या डाढ़ो बबा इन गाने की भी फरमाइश हुई, अचो तो मिली कर इंजॉय था।

हाँ ये गानों बुधो गाने का फोरन बाधी से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ वजू था उन जल्दी मोटी तमारी ईंदासीं तव्हां करी न वञो हिते वेठा हुजो पपन बुलो ॿुधो ऐं मां ओ हीअं वञी होटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

इसका तो मुझे भी मतलब पता नहीं है क्या होता है इसका मतलब, कोई ऐसा इंसान बताए जिसको बलूची आती है। जी बस दिल भर बस साउंड अच्छा लग रहा है, बाकी तो एंजॉय करो और क्या। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है, तमाम भी सोना सोना थी वेंदा, तमाम भी हसीन थी वेंदा, तमाम भी खूबसूरत थी वेंदा।

आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि जब आप अपने लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या चीज सबसे पहले आप नोटिस करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले आप देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो कि आप परचेज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जो है ना वो हाँ जी नाम देख लेते हैं, कुछ लोग मॉडल की फोटो देख लेते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं कि भाई इस क्रीम के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई है, कुछ लोग देखते हैं जी एक्सपायर डेट क्या जिस भी चीज की। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हैं। और ये प्यारा सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है फरीहा परवेज जी की आवाज, आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंडीज ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडीज।

बिल्कुल गाना हो गया खत्म और यहाँ पर एक और गाना हमारी लिस्ट में है, जरा वो भी हम सुनेंगे और साथ साथ ये गाना होने वाला है जी मास्टर मंजूर की आवाज में। हाँ जी, तो हम ये प्यारा सा गाना एंजॉय करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाने के क्या तरीकेकार हो सकते हैं, वैसे तो कुछ लोगों को लगाने के तरीकेकार भी मालूम नहीं होते हैं, तो लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये होंगे कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप जो है ना परचेज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो आप परचेज करेंगे उसके बाद, और आप रात के टाइम जो है ना सोने से पहले बस अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लीजिए। ये आपकी इस तरह फायदेमंद साबित होंगे, जब आप कुछ दिनों के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो हमने 5-10 मिनट अपने लिए निकाले थे ना, ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हमें। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए रात के टाइम अटेंड किया करें। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं या फिर आप लगा रहे हैं तो फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप क्रीम लगाएं ना लगाएं, फेस वॉश आपने लाजमी करना है। फेस वॉश करें सबसे पहले, अपने चेहरे पर ये जो डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है, सारे दिन की जमा हो जाती है आपके चेहरे के अंदर, तो उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसको वॉश कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से फेस को सुखा लीजिए, फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई हल्के हल्के हाथों से लगाएं और जो क्रीम है ना वो आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि बस ये सही होता है। कुछ चीजें बाकी जो होती ना सही, तो बस उनको बता दिया करें कि हाँ ये चीज सही है, तो बस ऐसे किया करें। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप हल्के हल्के हाथों से, और जैसे कुछ लोग बड़ा हार्ड तरीके से लगाते हैं, मसाज करे होते हैं नाइट क्रीम के ऊपर, तो ये चीज से जरा गुरेज किया करें। इन चीजों से थोड़ा सा जो ना वो पास होकर न कहो बाबा ये चीज होते हली तक नुकसान ही दो। तो हमेशा जो पानी खूबसूरत हमेशा तुम्हारी खूबसूरती जी ना वो सफा या बेहतर तरीके से हो जाए। ऐं तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो त सॉफ्टली कयो, ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट मिले उहो अहिड़ो मिले जो तव्हां ॾिसी करे चओ वाह साईं वाह कमाल थी वियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा बि ॻाल्हि आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी सिर्फ़

ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल ऐं ॾी सीट सां त इन जी बि तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो अहिड़ो ज़बरदस्त जेको तव्हां सोचींदा आहियो त बाबा हीउ रिज़ल्ट असांखे मिले पर कहिड़ो त बेशक तव्हांखे टी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾेई रही आहे उहो रिज़ल्ट जेको तव्हां हमेशह ॾेई रही आहे तव्हां वञो बाबा परचेस कयो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती जो थोरो ख़्यालु रखो।

जी वाह साईं वाह ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां इंजॉय कयो पिया प्रोग्राम आहे व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो बाबा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां अगरि तव्हां बि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में मालूमात हासिल करणु चाहियो था या तव्हांखे ख़बर न आहे त बाबा जेके प्रोडक्ट असां इस्तेमालु कयूं पिया इन्हनि खे असां छो इस्तेमालु कयूं पिया कुझु माण्हू वीचारा इलाही मासूम हूंदा आहिनि त हुननि खे बसि जेको बि दुकानदार प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो आहे न त हू इस्तेमालु करणु लॻंदा आहिनि अगरि इहा चीज़ तव्हां में बि आहे त बाबा पंहिंजी थोरी नेचर खे चेंज कयो इहा चीज़ सफ़ा पाण मां कढी छॾियो तव्हां वञो दुकानदार खे चओ बाबा असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण आया आहियूं ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी पोइ ई वेंदासीं अगरि दुकानदार चए त असां वटि इहो प्रोडक्ट कोन्हे अवेलेबल त तव्हां हुनखे नंबर ॾेई अचो जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई ऐं चओसि त भाउ हिन नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं पंहिंजी दुकान ते ई प्रोडक्ट अवेलेबल करायो जीअं तव्हां वटि अवेलेबल थी वञनि ऐं पोइ असांखे वठण में आसानी थी वञे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा खोड़ सारा फ़ाइदा जेके सॼे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आई आहियां हाणे तव्हां ते डिपेंड करे थो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं वठंदा कॾहिं इस्तेमालु कंदा ऐं ॾिसूं था केतिरा ख़ूबसूरत थी वेंदा अच्छा कुझु मैसेजेस आहिनि टाइम बि तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो और साइमा मीर हमारे साथ मौजूदु कहती है सुना है कि गरीब के बच्चे वफादार अमीर के बच्चे बेवफा ऐसा भी नहीं होता और कहती अच्छा सिंधी सॉन्ग अच्छा है लेकिन किसी के लिए किसी और को छोड़ना बेवकूफी मानी जाती है सामने वाला चाहे कितना भी डेंजर क्यों ना हो लेकिन हाथ हमेशा ये भी ठीक है जी ये भी ठीक है और ये हमारे साथ मौजूद है कहती योर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड योर शो इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिठोरो से दाऊद जमाली हमारे साथ है एंड ओसामा अवान एंड सर्वर मीरानी प्लीज प्ले सॉन्ग फॉर जिया सुमरो ओके मैं कोशिश करूंगी टाइम बच गया तो आपके लिए लाजमी आपकी पसंद का जो गाना है ना वो चलाया जाएगा और सागर भाई कहते हैं कि गिफ्ट कयो असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वठो पांजी वठो मां कंहिंखे गिफ्ट कंदसि पाण वठो रेशम गली वञो उतां मालूमात करायो ऐं उन खां अलावा जेकी जेकी असांजा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो पंहिंजे मार्केट हलिया वञो ऐं उतां मालूमात वठो तव्हांखे हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम सां मिली वेंदी अच्छा चाचा कहते हैं सिंधी तो ॾाढी प्यारी आहे मुंहिंजी बस ॾिसो ॾिसो तारीफ़ न कंदा कयो अला फरवा गुल हमारे साथ ही फरवा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया हिदायतला कहते एक ये सिंगर दो दफ़ा क्यूं नहीं एक ही सिंगर एक मरतबा चला है और इन खां अलावा रमज़ान भाई आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है ठीक है जी लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बताए या नहीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर पर मिल रही है या फिर नहीं अच्छा चाचा तव्हांजो जेको गानो आहे न पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदासीं ठीकु आहे और जी साला हमारे साथ मौजूद है सालार सिकंदर जी आपको वेलकम कहा

आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू वेरी मच। और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही होगी, अगर नहीं मिल रही तो आप लाजमी मालूम लीजिएगा, फिर परचेज करके मुझे बताइएगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, माहिर इरफान सियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आप हमारे साथ पूरा प्रोग्राम सुनते हैं जी, थैंक यू सो मच इसके लिए।

ऐसी नाराजगी है कि बतानी पड़ रही है कि हाँ भाई मारो ठल आया चुमुखे मना ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, और मुलाजिम भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। चाचा की स्किन ब्यूटी क्रीम दादी, बिल्कुल जी चाचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर दुआ है। अखलाक भाई कहते हैं सिदरा तमाम वनो था हाणी हाल लगी तय तो गुर्जे फहीम के और कैसे ये मत बोला करे। और उनका अलावा मुख्य यो जवाब दिनों तसा एक्सपायरिंग डेट जगह उहा चेक करना है तो ये दाढ़ा मानू भला हुंदा था। अगर तां कोई भी प्रोडक्ट परचेज कयो था ना तब यूं सब चीजों तो तां बाद का एक्सपायरिंग डेट आ ना मुनी करे वठंदा कर तवा का ना वो एड़ो मिली वेंदो आहे जेको एक्सपायर्ड हुंदो आहे। आई जदी तां उनके इस्तेमाल करना जदी गोठाणा वेचारा कुछ मासूम हुंदा आहे ना जदी तां कोई भी प्रोडक्ट वठो उहा लाज़मी चेक करना कयो उहा डेट प्रोडक्ट परचेज कयो जेके सां आई हाणे सरो ख्याल रखो किथे का गलती थी हुजे तो माज़रत कयूं था। जिनो फी को गानड़ो चानड़ो रहिजी गयो सलामत बाय।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: ईरान मुआशी जारियत जारी रखण ते विच ओभर में बैरी जोन कायम करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखी त रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदीअ ताईं बैरी जोन कायम कयो वेंदो। ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ीअ सां घटिजंदियूं। अमेरिका में फी गैलन तेल $2 ताईं बि थी सघे थो। ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई जे ऐलानियल 27 सेप्टेम्बर ते ऐलानियल एहतजाज बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आइनी बोहरान सां भेट ॾेई छॾी। अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी। ॿुधणीअ लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फैसलो। अदालती चयनि सूबनि जे आईजीज ऐं एडवोकेट जनरल खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सेप्टेम्बर ताईं मुल्तवी कई वई। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह पारां स्कूल जे वक़्त में कलाक घटाए करण जो ऐलान। कराची में तकरीब के खिताब कंदे सरदार शाह चयो त ॿारनि पारां वधीक वक़्तु हुअण ऐं बुख लॻण जी शिकायत ते वक़्तु घटाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

0: एनर्जी ऑफिसरी रखती वही एमएजना रोड ते कायम केएमसीजी ऑफिस के बाहे किचन में लगी बाहे के नतीजे में मेयर मुर्तजा वाब जी ऑफिस सड़ी रखती वही फायर ब्रिगेड के बिन गाड़ी बाहे ते जब्तो आंदो बाहे सबब को जानी नुकसान न थे। मटियारी वेझो घर की छत किरी पई एक जनो फोत ब जख्मी खानोट में घर की छत किरण सबब नंड सुतल आशिक शेख फोत थो एक औरत बाड़ी जख्मी थी। गौसपुर भरसा बाजकानी भंगवार बिरादरी के बिन धुरी में हलंद तकरार के निबेरे लाय जिरगो गोट मोहम्मद हयात बाजकानी में मीर जरियाब खान की सरपंची में झड़ीदड़ धुरी जहा मानू भी शरीक थे। 16 साल का हलंद तकरार दौरान मजमू तौर से 4 जणा मारजी वया हुआ। न्यू सईदाबाद वेझो एसएम बचाओ बंद भरसा मछी मारण लाय वयल नौजवान डोरे में बुडी वयो गोला जारी पुलिस एक जणे के हिरासत में वठी छड्यो। नूर केटी थाने जी हद में गोट भाई खान वट एसएम बचाओ बंदन ता पेर तिरकण सबब नौजवान राजा बुडी वयो पुलिस रफीक के तहवील में वठी जांच शुरू करे छड़ी। भाऊ कोसो वेझोण जातल हथियार बंदन गोट गोधो वाह वट कायम पुलिस पिकेट ड्राए छी अणजातल हथियार बंधन रात के वक्त पुलिस पिकेट के ड्राए पट कर छो। पुलिस जो चवण है जवाबदार की सुणप गिरफ्तार लाए कोशिश जारी आन खे गिरफ्तार कर मेयर के बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी एजाज कॉलोनी के रहवासियों को बुनियादी सहूलत के खोट खिलाफ मार्च। मेहड़ के बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी एजाज कॉलोनी के रहवासियों बुनियादी सहूलत की खोट खिलाफ एहतजाज कर मुजाहरीन पारा टिन्ही कॉलोनियों के बुनियादी सहूलतों देने का मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: इट्स 3:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: माइनस हो सारी टेंशन्स जब हो आपके पास Zong 4G की प्लस ऑफर। लेट्स गेट इट।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन बॉडी क्रीम।

0: ब्यूटी क्रीम, 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।